0: मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पीछे पछताए
1: कागद कलम न लिखन हार मने कावे करन विचार
0: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए
1: मने सुरत होवे मन बुद्ध मने सगल पवन की सुध
0: मने मोह चोटा न खाए मने जम के साथ न जाए
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए
0: मने मार्ग ठाक न पाए मने पत्यों प्रगट जाए
1: मने मगन चले पंथ मने धर्म सेती।

0: कर्म है अधम है भूत है छूत है
1: शोक है कर्म है परम है
0: अजीत है अपीत है बाह है अगाह
1: है निदान है नीक है फरीक है
0: चंग पयात शद
1: नौ सर्वान समस्त निदान नौ देव देवे पेखी पेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
1: नाथ नृसिंगी परमाथे नौ पान पान

0: कलंकी स्वरूप नमो राज राजेशम परम रूपे
1: नमो जो
0: विजगेश परम
1: सिद्धे नमो राज
0: राजेशम
1: परम
0: प्रीते नमो शास्त्र वाणी नमो अस्त्र मणि लोक माता
1: अभिकिया परमिया भोगिया भुक्ते नमो जो विजगेश परम जुगते
0: नमो नत नारायण कुरु कर्म नमो प्रीत प्रीत विश्व धर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राज रूपे नमो शाह शाहंग नमो पूपे
0: नमो दान दान नमो मान मान नमो रोग रोग नमो अस्त्र शनाने
1: नमो मंत्र मंत्र नमो जंतर जंतर नमो
0: नमो सदा सतम परनाशी नूपी रूपे समास्तल निवासी परमेश्वर पुरुष पालं सदा सर्वदास दाता दयालंग
1: समस्तो
0: पराजी
1: समस्त
0: सामंग तेरा जोर चाचरी देव नंदी स्वरूपे नौ सर्वमान्य समस्त निदान।

0: प्रीते नमो प्रीति प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व
0: नमो सर्व ज्ञान नमो परम दान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
1: नमो सर्व कृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे तरपंगी
0: नमो जीव जीवम नमो बीज बीजे खजे बीजे समस्तंग प्रसजे
1: कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदंग निवासी चरपट शांत वै प्रसाद
0: अमृत धर्म खाल जोगे चाल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्म लख
0: कर्मंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने
1: सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग
0: सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं काले सर्वं पाले
1: बाल शांत वै प्रसाद
0: आदिनाथ मूर्जुन पुरख पार
1: सर्व मान तिर मान देव पेवाद उदार
0: सर्व काल सर्व को

0: क्या शिषदिशा क्या पिज भेसा क्या गंज कर्म क्या पंज भरम
1: क्या
0: पिज लोके क्या धर्म तो जय क्या सुख वर्ण सर्वा भरण
1: जतन कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के।

0: ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणिनः सर्वं त्राणिनः
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
1: सावल शांत प्रसाद
0: नमो नरकनाश्य सदैवं प्रकाश्य अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते
0: नमो नामे त्रपंगी त्रकाम निरपंगी स्वरूपे सर्वं

0: परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है,
1: करण है, जाके करण है, मन मान्य है, जग जान्य है,
0: सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वस्य है, सर्वनास्य है,
1: सर्वनाकर है, सर्वेश्वर है।

0: शंकर है करुणालय है निरपनायक है सरपायक है
1: पंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है
0: अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुचंग प्रयात शत
0: नमो सूर सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज
0: नमो राज संताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो

0: निरूपेण रेखे समस्तल प्रणामे समस्तल प्रणाश्य गंजन नामे समस्तल निवासी
1: स्वरूपे को कर्मंग
0: सदा सचदान स्त्रंग परनाशी गरी मुल को निंदा।

0: बड़े बरियार बचार है सार की धार पछैया तोड़नहार सुबातनी जक चार लवैया
1: नायक जाचक नेक सुएक देवैया
0: नंदन साचर भूत पवख।

0: जगत नदरी आया।
1: सृष्ट का मूल रचा जो तराखी ता तू जग में आया।
0: चाओ प्या प्रभाव गम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बढ़िया।
1: सखी सोग दुख ना व्यापय,
0: चरण लागे दिन सपागे अपना फिर जापे।
1: गुरु शब्द जानी।

गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपन निरंकार सच नाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रंजना मंचाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंगाए पार कुलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मधाणियां नगा पंखी पौंदियां लैन नसा सूए चढ़ पवाई जंत नानक पौंदियां गणत नंत बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचे सब को नच नच हसे चले सिर ओए उड़ना जाए सिदना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ ते ना मन पाओ पौड़ी।

का नाम जन को मुक्त युक्त वर का नाम जन को तृप्त भोगता हर का नाम जन का रूप रंग और नाम जुत का परे न भंग और का नाम जन की वडियाई और कै नाम जन शोभा पाई और का नाम जन को भोग जोग और नाम जुत कृष्णाय बेओ।

अर्जन क्या उठ स्थानी अर प्रताप जन वरना जानी ओत बोध जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जप पैर का भगत प्रगट नहीं छ पैर की भगत मुक्त भव करे नानक जन संकेते तरे पार जाते वर को नाम काम ते नर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लत्था नाम की महिमा संत रिद बस है संत प्रताप दुर सब नस है संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुलक शवर न होए नान गुरमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहुत शास्त्र बहुत सिमृति पेखे सरब टंडोल पूजश नाही अरारे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप तप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सब त्याग बन मध्य फिरे अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दानों में बहु रतना शरीर कटाए मैं कर रती वर्तनेम करे बहु भांति

और उसका विश्वास ना हो वह जिसकी वस्ते सागरा के प्रभु की आज्ञा माने मत है उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पांत माया के हित सर प्रोध जान अनहित बिरकी सह सो रंग लावे बिन सह मन पछतावे जो दिशा सो चलन हार लपट रहो ते अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नहीं ताकुआत नावे के मनर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटंब सुभाया मिथ्या में ममता माया मिथ्या राज उबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रत अस्थि स्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया फेक अस्था मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आप सुप्र करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवर के चरण मिथ्या सर्वण पर निंदा सुनै मिथ्यास्त पर दर्भ को हिरै मिथ्या नेत्र पेट पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर बेकार को धावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बासलेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल दे नानकारा नाम लय बिरति सागत की यार जा साज बिना क्यों वसूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता क्या दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बेहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम तम तम ते जंजे कट बस्यो हर नाऊ नानक तक है बल बल जाऊ राहत अवर कश अवर कमावत मनी प्रीत मुखो गण लावत जानन हर प्रभु परवीन बार पेक न काऊ पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरै जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानकुंजन चरण प्रात

0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरात, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक। और तार है जो अंतरनाम हो, सर्व में पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक को परस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाई रसना परस, मन में प्रीत रंजन दर्श, परत्रया रूप न पेख्या नेत्र, साधक टेल संसंग हित, करना सुने काऊ की निंदा, सब ते जाने आप सो मंदा, गुरु प्रसाद भिख्या पर हरै, मन की बासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मते को वैसा, परस बैसनो सूर जी सुपर सो प्रसन्न, बिसन की माया तो पिन, कर्म करतो है ने कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह है, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मंत अंतर सिमरन गोपाल, सब उपरोक्त कृपाल, आप दृढ़ अपना नाम जपावे, नानको बैसनो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग है दुष्ट का संग, मंथे बिनसे सगला परम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मलख होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टाल करै नितनीत, मंत नर पै बिसन प्रीत, वर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम, तमै सोधै राम नाम, सारस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जी, वैर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नावै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सुख मैं जाने अस्थूल, चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देस, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तस्की गत होए, सासंग पावे जन को, एकर कृपांतरो तार है, पास प्रेद मुक्त पात्र को तार है, सर्व रोग का उकद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितें न पाई है धर्म, नानक तिस मिले जिस लिख्या तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया दास, संतन
1: ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आगे आत्म तवै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हरख तैसा सोग, सदानंद तै नाही वियोग, तैसा सुरन तैसी जमाटी, तैसा मृत तैसी विखाटी, तैसा मान तैसा मान, तैसा रंग तैसा राजान, जोगरताय साई जुगत, नानक पुरखई जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाव, जिस जित का रखे तैसा तिन्नाव, आपे करण करावन जोग, जिप्र पावे सोई फुन होग, पसरु आव फुन तरंग, लखन जाय पार ब्रह्म।

कई कुड़ भोजन निभराय, कई कुड़ बैठते खाए, कई कुड़ कल थक पाए, कई कुड़ के यतन मंत, कई कुड़ माया में चिंत। जय जय पाड़ा तत राखे नानक सब किस प्रभु।

संगबिंसे सबसांगे चरण चलो मारे गोबिंद मिटे भाव जपी हर बिंद कर हर कर्म सरुण हर कथा हर दरगे नान कुजल मथा बड़भागी ती जन जग माए सदा सदार के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से धनवंत गणी संसार मन तन मुख बुले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक वैक पछाने ते सुखी ओ सोजी जानो नाम संग जिसका मन माने आ नानक तिन्ने निरंजन जाने आ गुरु प्रसाद अपने आप सूझे तिसकी जानो तुस न बूझे साध संग हर हर जस कहत सर्वलोक त्यौहार जंदा ते अंतिम कीर्तन को ख्यान कृष्ण मै सोए निर्वाण एक उपरिजन की आसा तिसकी कटे जम की फासा पार तुम किस मन भूख है नानक तिसन लाग है दो जिसको हर पुर मंच ते आवे सो संग सोए लाना डुलावे जिस पर अपना कृपा करे सो सेव को किस ते डरे जैसा सा तैसा दिष्टाया अपने कार्य में अब समाया सो दसो दसो दसिजिया गुरु प्रसाद तसा बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोय अस्थोल न कि जन्मे न कि मरे अपन जल दया भी करे आम जाम दृष्टान दृष्टिया के कारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आपे अनक जुगद्राय था वो था अवनासी नाई किस कांड धारण तारे ब्रह्मांड अलख भे पुर प्रताप आप जपाय तनानक जाप जिन प्रभु जाता सो सुभावंत सब संसार उदर तिन मंत प्रभु के सेवक सब उदाहरण प्रभु के सेवक दुख सारण आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द जप निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जोत भाव विश्राम नानक तिन प्रभु को तुम कर मान जो कुछ करे सुप्रभ के रंग सदा सदा से हर संग सह सवाए हुए सोए करुण हार पछाण सोए प्रभ का किया जन मीट लगन जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते जिस माए समाए सुखण दान उन्हों बनया।

सर्व जिया पे प्रताप सकल चिंता मनमाय तिस्ते बिरता कोई नाय। रे मन मेरे सदा हर जाप अपना सी भ्रमे आपे आप अपन किया कछ न होए जिस।

संत जना मिल करो विचार, एक स्मरण उधार, रूपा स्वामी विचार, जन कम मैं उतार, करण कारण सुपुर सम्राथ, दृढ़ कर गौ नाम हरवाथ, तन संचो भगवंत, संजन कर निर्मल मंत, एकास राखो मन माय, सर्व रोग नानक मिल जाए। जिस धन को चार गुण रतावे, सो धन हर सेवा ते पावे, जिस सुख गुण बाचा में, सो सुख साधु संकरे, जो सुभा को करे फली करनी, सासो बज हर की शरणी, अनुको भावी रोग न जाए, रोग मुड़े अल कुदलाए, सर्व धन में हर नाम धान, आप जप नाम दुर्गी प्रवान, मन को दुवर के नाय, दय दिशा ते आवे ठाए, ताको विघ्न लागे कोई, जाकर दिवस हर सोए, काल ताती ठंडा, हर नाव सुमर सुमर सदा सुख भाव, पौ गण से पूर्ण यास पग पाया, तुम प्रकार तित कर जाए, विषय विनाशी, कहो नानक काटी फांसी, तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरे सोका चूका चावा, गुण मटे प्रभ से व्याप त्याक्षण, गुरुदेव मृतन जन्म का होय उधार, हर हर सिमर प्राण धार, अनुक भावन सुट नारे, सिमर सास वे विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, संगन चाल सिरे तना तू क्या टपटावे, मूर्ख मना सो तमीत कुमर भंता, इंते गुण तू गुण सनाथा, राजरंग मैं विस्तार, इंते कहो कौन छुटकारा, सहसी रथ वार सवारी, झूठा डाम झूठ पा सारे, दिन दे दे भोजन वगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत ले आने, भगत बिना बुडू बेस आने, हर की भगत गुरु मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे उचे, चरण कमल राखो मन माए, जन्म जन्म के लिख जाए, आप जपो वरनाम जपाओ, सुनत कैद रहत कद पाओ, सार पुरुष सर कुण आओ, सह सुभाए नान गुण गाओ, गुण गाओ तुर तुर समैल, बिन जाय में फैल हो, चंद पस सुकुण आल, सास करा सर नाम सुमाल, छठ सियाल में सगली मना, सा संग भावे साई जाना, हर पुंजे संच करो व्याया, सुख दर गए जयकार, सर निरंतर एको दे, कहो नानक तां के मसगले, एको जाप एको साला, एक सिमर एको मनिया, एक सके गुण गावन, अंत मंत जाप एक भगवंत, एको एक करया, पूर्ण पूर प्रभ्या।

जब आकार कृष्ण दृष्टि तब पापुन तब कहते हो तब जब धारी अपन सुन समाता बैर ब्रो के संकमाद जब इसका वर्ण से न जापते तब हर सौ को किसे व्यापते जब अपने आप अपार मुख पर मैं अपन अकेलिया वर्ती ज नानी करने हार न दूजा जब होत प्रभु केवल धनी तब बन मुक्त को किसको गणी जब एक कर्म अपार तब नरक से रुको कौन उधार जब निर्गुण प्रसाद सुभाए तब शिव सगत को बिठाए जब आप अपनी जो तरे तक अपने कौन कत डरे अपन चलता करने हार नान ठाकर कम पार अपनासी सुखे अपने आसन दा जन्म मरण को का विसरण जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास को किसोहाए जब अवगत गोचर प्रवि का तब चित्रगुप्त किस पुछद लेखा जब नाल रंजन गोचर का दे तब कौन श्री कुण बंधन बाधे अपने आपा भी चर जा नानक आपन रूप आपी पर जा जय निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तय बिन मैल कहो कैत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अपमान जय स्वरूप कैल जगदीश तय छल छलगत को की जय जो स्वरूपी जो संग समाव तय किसे भूख पवन त्रुखतावे करण करावन करने हार नानक करते कान समार जब अपनी शोभा अपन संग मनाए तब कौन बाबा भाई बा मित्र सुध भाई जय सर्व कला पे पर बीन तब वेद कतिव कहाँ कोची जब अपने आप अवतारे तो सगन सगन का विचारे जय अपन ऊच अपने अवनेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेहरा बिस्मन बिस्म बिस्मा नानक अपनी गजा नुआ जय चल छिद भिस्माया मुख से व्याप्त माया पसकुआ पै देश तय कुण का नाई प्रवेश जय कह के एक भगवंता तय कौन अचिंत घिसला के चिंता जय अपना पाप हार तय कौन कथे कौन सुन हारा बहुवेन्द उचते उचा नानका पुसुका पे पूछा जया प्रचु पर पंच कार तय गुण मैं किन्नु विस्तार पापुनता पे कावत को नर को सुरु गुंचाल आल जाल मै जंजाल हमें मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान प्रकार के वो खियाने अपन खेल आप कर देख खेल संकोचा तव नानक कह जय भगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप दो पा कया पै धनी उनकी शोभा अणु बणी आपे कौते करण चो जे आपे रस भोग निर्जोग जिस भाव तिसे अपना लावै जिस भाव तिस खेल खिलावै बेशुमार थाकन तै तोल।

राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान रोशने चिराग मंबाए नूर सर्वकाली सर्वदेशी सर्वगुण संपन्न सर्व दुख हरता दसां गुरुआं प्रमाणिक भगतां गुरसिखां सेवकां दे आत्मक स्वरूप तखत चवर छतर दे मालिक शब्दावतार धन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र मुकदस मुबारक गोद अंदर विराजमान गुरु की संगत जीओ। सब तो पहला श्री आनंदपुर साहिब जी दे बादशाह माछीवाड़े दे दरवेश श्री हेमकुंड साहिब दे महान तपस्वी श्री दमदमा साहिब दे महान विद्वान श्री पौंटा साहिब दे महान कवि श्री पटना साहिब दे लाडले लालन भीखन शाह दा काबा बुद्धू शाह दा पीर चमकौर दा सेनापति पंघाणी दा सूरबीर श्री मुक्तसर साहिब दे बख्शनहार जफरनामे दे साहित्यकार पंथ दे वाली अमृत के दाते शास्त्र अते शस्त्र दे धनी सरबंस दानी नीले दे शाह सवार बाजा फौजां वाले अकाल सोत धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह दा एको बारी विच बुलंद आवाजी दे नाल उत्तर देना जी ओ उच्चारण करो बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी का तरस होया है। गुरु जी इज बीइंग काइंड टू अस ऑल दैट वी गैदर्ड हियर दिस इवनिंग टू बी अटेंडिंग दिस इवनिंग गुरमत समागम। Before us, there were a shabad which the Jatha was singing, Tan Tan Ram Das Gur, Jin Sirya, Tine Savarya. After the shabad, respected Veerji was sharing a very, very important message. Satsang ji, we need to pay attention to that, what Veerji was sharing with us. A bahut chinta da a subject hai. And let me tell you one thing very clearly. Very rare gurdwaras so far where we are sharing these things. Bahut ghat gurdware ne nahi ta assi gaab ja ke chale jaida gharan nu apo apne. E bahut vaddi chinta da vishay kyon ji is tarah unna nu manipulate, how did they do that, how can we stop that? What is the solution do we have? And the answer is, we should take Gurbani help to get it fixed. Satsang ji, Gurbani asi pad bhi rahe hain, ga bhi rahe hain, sun bhi rahe hain. One thing, let me tell you all, we are unable to understand the message of Gurbani. Asi, we are acting like a Sikh. But you know what Guru Sahib Ji says? We should start living like a Sikh. Satgur ki bani,

we are being so much judgmental. क्योंकि हजे उसकी सराउंडिंग असी महसूस नहीं कर रहे, दूर कतहू ना जाई हजे नहीं होया साडे जीवन दे विच। बहुत डेप्थ है एवरी सिंगल शब्द दे विच। इट्स नॉट जस्ट सिंगिंग एंड लिसनिंग, हर शब्द दे विच जिंदगी दा एक सारांश है, तत्व है, एसेंस ऑफ लाइफ है हर एक। आओ सारे यतन करते हैं समझण दा।

ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।